मन मूर्ख मिलै सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कब हू ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे। जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए। मन मुख किशु न सूजै अंधले, पूर्व लिखिया कमाए। पूरे भाग

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से ती लिवलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

करे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है, गुरमुख बूझे कोए महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अन दिन हर लिवता।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन में एको जोगी कहो कवन है राज।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

पाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिय जियो बाज महला चौथा हर जन

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपुर अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया अंध बिनोद तितै कर सोह है जो धन कंत सिंगारी जियो सा गुणवंती सा वडभागण पुत्रवंती सीलवंत सोहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो धन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई परधाने सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सबराई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहो मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तो दुत्याई एस मत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परिवां जियो। माज महला पंजवा तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूर्त चसे पल घड़िया तन सो ओए संजोगा जियो। उद्दम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया।

तू संतन की करहे प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा।

खीर अगावै, ज्यों निर्धन धन देख सुख पावै। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहु मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, भरता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम हर के दासे, हर हमरा हम हर के दासे। नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया। सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

पावै। नाम निधान तिसहै प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना, जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना। तिसहै प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक हथ आया बरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त भए कनेरे। नाम निधाना गुरमुख पाइय कहो।

अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस हृदय बसेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावौ प्रभु दया ते मंगल गावौ उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोकौ साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो जिस

शब्द विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

ब्रह्म पछाणी सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम कै पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ

सोई नानक सच त्याई सद ही अंतर जामी जानो जियो। माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुसुहेला जब अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समान।

अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोहै सच नाम मल कदे ना लागै मुख उजल सच

गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावहि मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावने गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावने गुरमुख आनंद

वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद बखान है मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिया शब्द सुहावै, गुरमती मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती, इह मन सच रंगावणिया।

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया।

मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानने। जिस को तू प्रभ

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग नानक को प्रभ राख।

मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिधा।

पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नै जलो, अन्न पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कुई, एक तुई महला पहला।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में कर

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख

तुर मस्तक पूरा, हर हर नाम त्याया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा, हर हर

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाइय संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा न जी।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन।

दिन सजाए पूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साद है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आ गए। जन नानक हर रस तृप्त।

हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासयो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे।

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो, मन मोर कोह केड़ा।

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हा

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुना।

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हों हों करत नहीं।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न

नहीं रोता, आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया, पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया।

सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मै वारो वार। सूतक अगन पौणै पानी माहे, सूतक भोजन।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

रहे गुर कै शब्द पंच संघार आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी।

मोह अत परम पुलहाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गृही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव है से बड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

खाए, जम डंड सह है सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

कह लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को विरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते जो मुह फेरे तेरे मुख बुरे दिसन अन दिन बद्धे मारियन फिर वेला नाल हन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर पावंदे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन।

छड विकराल। हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल। गुर ज्ञान खड़

पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहे।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इस नो नाही किशताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर मह दीपक जलियो।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहरै।

समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस।

खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

समानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोंगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जाता रह आसिर जाम सच पछाणिया।

प्यारे अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हम मारे इन बिद मिलो प्यारे। सात हन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर

चहो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे आन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे, जुग

गुर पुरख बिधाते, पुरखो बिधाता एक श्री धर, क्यों मिलहै तुझे उडीनियां, कर कर है सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको।

या जुगम है एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट में उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई।

अंधकूप ते तिह कढ़हो जिह होवहो सो प्रसन्न न्या कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक तिह उस्तत करो।

पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल जुग मह पाया फिर या अवसर चरै ना हाथा नाम जपहो।

अखर महत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

सखा अगयान भंजन गुरुदेव बंधप सुहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव

अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखे।

सन दसना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा अविना

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमा है उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख

देख अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम महे उदम पला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी महे अमृत बानी हर को जस सुन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

सुखमंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहें।

पदी। मानुख की टेक बिरछी सब जान, देवन कौ एक भगवान। जिसका दिया रह अघाय, बहुर न तृष्णा लाग आय। मारे राख को आप, मानुख कै कृष्णा ही हाथ। तिसका हुक्म बूझ।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहु कछ नाम दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूख।

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहाँ बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त।

श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

महो विशास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।

नीच। नरक सुरग भ्रमतौ कणो सदा संघार है मीच। हरख सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाए। जिन किए तिसह न जा।

सब कोए। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े। जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े, तुद नो सब ध्यान दी।

करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जहां गुर कहै उठो मेरे भाई, बह जाहे कुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढ़े लद्दो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।

कहे बड हम ही जिसह बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूक इन विद्मान कलही है।

ढूंढ जब आवा। जिह गढ़ गढ़यो सो गढ़ मह पावा, जिह गढ़ गढ़यो सो गढ़ मह पावा। नाना रण रूतो नर ने ही करे, ना निवै ना फुन संचरै।

भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक अनंत करह हर पूज।

दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन

हई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट झख मारा, जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हरना।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराश।

वे पापी सदा फिरह अपराधी मुखों अपर सकहाव है सदा सदा फिरह अभिमानी सगल कुटुंब डुबाव है।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पए संग तेरे इंद्री का बल थाता चरण रहे कर टरक परे है मुख हो न निकसै बाता थाके पंच

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया, ध्यान मान मन एक मै, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पए, जोत समाए।

मन कौ ए उपदेश दृढ़ हवै सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे तूटह माया।

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर न होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कछ न उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं थिर

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तार।

जिन लाग हर लिव तुम्हारी जी जंत सबे ही नाचे नाचह खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाचह जिन गुरमुख।

भाव कह फूल है आनंद बिखै सोग कब हसनो कब रोइए कब हू मैल भरे अभिमानी कब साधु संग धोइए कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोइए कहो नानक।